0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और फादर संजय दिलीप एक्का। श्रोताओं, 12 और 13 सितंबर को भारत की मेजबानी में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इस वर्ष के 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई देशों के शीर्ष नेताओं के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख भी शामिल हुए और इसका आयोजन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण की थीम के तहत किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है और वैश्विक संस्थाओं को भी बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप ढलना होगा। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब कई अन्य देश भी शामिल हैं। इसकी स्थापना प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उस वैश्विक व्यवस्था में अधिक मजबूत आवाज देने के उद्देश्य से हुई थी जिस पर लंबे समय से पश्चिमी देशों का प्रभाव रहा है। ब्रिक्स नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र भी अपनाया जिसमें बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने, वैश्विक संस्थाओं में सुधार और विकासशील देशों की भूमिका व प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में AI, जलवायु सहन सह क्षमता और विकास सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का भी समर्थन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र मंगलवार 8 सितंबर को न्यूयॉर्क के UN मुख्यालय में शुरू हुआ। महासभा के निवर्तमान अध्यक्ष एनालेना बेरबाक ने समापन भाषण दिया। इसके बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने बेरबाक से अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। यह अध्यक्षता एक वर्ष के कार्यकाल के लिए होती है। नए महासभा अध्यक्ष खलीलुर रहमान ने युद्धों, मानवीय संकटों और गहराते जलवायु संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रति वैश्विक भरोसा फिर से कायम करने का यह दृढ़ संकल्प जताया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है। यह वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है तथा प्रस्तावों को अपनाता है। हालांकि महासभा के अधिकांश प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क स्थित UN मुख्यालय में शुरू हुआ। नए महासभा अध्यक्ष बांग्लादेश के खलीलुर रहमान ने अपने कार्यकाल की प्राथमिकताएं पेश करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रति वैश्विक भरोसा फिर से बहाल करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल चुकी है और संयुक्त राष्ट्र को भी भविष्य के लिए तैयार होना होगा। इस वर्ष महासभा की थीम है भरोसा बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन, ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सर्वजन के लिए काम करे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि नया सत्र ऐसे समय शुरू हो रहा है जब दुनिया युद्धों, भू राजनैतिक तनाव, असमानता

0: 1954 को जापानी शांति घंटी संयुक्त राष्ट्र को भेंट की थी। यह घंटी 60 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा दान किए गए सिक्कों और विभिन्न प्रकार के धातुओं से तैयार की गई थी। इसे पारंपरिक शिंटो मंदिर जैसी लकड़ी की संरचना में लटका कर रखा गया है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने दुनिया भर में बढ़ती हिंसा, विभाजन और हिंसक टकरावों के बीच विश्व नेताओं से शांति में निवेश बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में जापानी शांति की घंटी बजाने के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शांति अपने आप हासिल नहीं होती, इसके लिए लगातार मेहनत और ठोस कार्रवाई जरूरी है। महासचिव ने कहा कि हिंसा और विभाजन समुदायों को तोड़ रहे हैं, हिंसक टकराव फैला रहे हैं और लोग पीड़ा झेल रहे हैं, मगर समाधान के लिए जरूरी संवाद और एकजुटता कमजोर पड़ रही है। ये अपील 21 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस से पहले आई है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है शांति में निवेश, सर्वजन के लिए, हर जगह हर दिन। यूएन प्रमुख ने विश्व नेताओं से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, मानवाधिकार, संवाद और कूटनीति में निवेश बढ़ाने की अपील की।
0: 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए जघन्य आतंकवादी हमलों में हजारों लोगों की जान चली गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि 25 वर्ष पहले हुए ये हमले किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। हमलों की 25वीं बरसी पर उन्होंने हमलों के पीड़ितों, जीवित बचे लोगों और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे राहत कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अनेक देशों ने सुरक्षा उपायों को मजबूत किया और आतंकवाद से निपटने के प्रयास तेज किए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
1: 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों की 25वीं बरसी पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने लगभग 3,000 पीड़ितों को याद किया जो अमेरिका और 90 से अधिक देशों से थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उन सभी लोगों के साथ खड़ा है जिनका जीवन इन हमलों से प्रभावित हुआ। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक ने महासचिव का संदेश दोहराते हुए कहा,
2: As we pay tribute to the victims,
1: पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए आइए आतंकवाद से मुक्त भविष्य के निर्माण के लिए हम अपने साझा संकल्प को फिर से दोहराएं। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक के शब्द। महासचिव ने कहा कि 2026 में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति के 20 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। ये याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक साझा जिम्मेदारी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने देशों से आतंकवाद रोधी कदमों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानून के अनुरूप रखने की अपील की है।
0: अफगान में 2021 में तालिबान की सत्ता में लौटने के बाद से हालात लगातार बिगड़े हैं। लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं और बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है। तालिबान शासन का सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने कहा, आज अफगानिस्तान में बहुत से लोगों के हालात बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, आवाजाही की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर लगे कड़े प्रतिबंधों की निंदा की। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

0: आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापालियो चौदहवें ने शुक्रवार को अगुस्टिनियन धर्म समाज द्वारा संचालित संत पापालियो चौदहवें अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें प्रेम की सभ्यता का निर्माता होने का संदेश दिया। संत पापा ने विद्यार्थियों को अपने संबोधन में कहा, मैंने शुरू से ही विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी निकायों, सामाजिक संगठनों, कलिस्से से जुड़े समुदायों और नेटवर्क के साथ व्यापक वार्ता के लिए अध्ययन केंद्र की प्रतिबद्धता की सराहना की है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोगपूर्ण संबंध और आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा,
1: Il segreto è nel camminare insieme, sempre.
0: कि यह राज इस बात में निहित है कि हम हमेशा साथ मिलकर चलें और उन लोगों से अपने विचारों को साझा करने हेतु अपने द्वार बंद कभी ना करें जो हमसे अलग हैं। संत पापा ने अध्ययन केंद्र के सदस्यों को सच्चे मानवतावाद के मूल्यों से प्रेरणा लेने को प्रोत्साहित किया। ये मूल्य सृष्टिकर्ता के प्रति हमारे खुलेपन में, दुष्टों के संग भ्रातृत्व में संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा, हम युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि शांति और न्यायपूर्ण संतुलन के ताने बाने से सभ्यता का निर्माण करते हैं। हमारे समय की चुनौतियों का सामना हम ख्रिस्तीय नहीं करते तो वर्तमान सामाजिक, श्रम, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में ख्रिस्तीयता के प्रकटीकरण की नई व्याख्या की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने जोर दिया कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें चाहिए कि हम आम विद्यार्थियों और धर्म सिद्धांत और विशेषज्ञों के अलावे लोगों तथा संस्थान से निरंतर वार्ता करें। संस्थान के लक्ष्य को आशा की एक प्रेरिताई निरूपित करते हुए उन्होंने कहा, हमें सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन हेतु एक ऐसी तैयारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो आम भलाई, समुदाय के प्रति जिम्मेदारी, एकजुटता, न्याय और शांति पर आधारित रिश्ते को स्थापित करने हेतु सेवा के कार्य में समर्पित हो। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगुस्टिनियन संस्थान मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, जिसके फलस्वरूप प्रेम व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में नवीनता लाने का एक मूल सिद्धांत बन सकता है। उन्होंने संस्थान के विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा, ईश्वर की नई चीजों में दक्षता हासिल करें, उनमें तेजी और निपुणता हासिल करते हुए सबको चकित करें, लेकिन उन सभी चीजों में भी जिसे वे गुप्त रूप में हमारे लिए लाते हैं। रोम के विकर जनरल ने वैटिकन समाचार से वार्ता करते हुए अनंत शहर के कलिस्से के संबंध में कहा कि रोम में भूखों मरना कठिन है, लेकिन लोग निश्चित ही अकेलेपन से मरते हैं। 19 सितंबर 2025 की आधिकारिक प्रेरितिक बैठक की भांति संत पापालियो चौदहवें के 18 सितंबर 2026 को संत जॉन लातेरान के महागिरजाघर में रोम धर्म प्रांत की आम बैठक के पूर्व वैटिकन समाचार से वार्ता करते हुए रोम के विकर कार्डिनल बाल्दो रेइना ने कहा, हम धर्माध्यक्ष और उनके धर्म प्रांतों के बीच संबंध को मजबूत कर रहे हैं। इस प्रेरितिक बैठक की शुरुआत, जिसमें धर्म प्रांत के 334 पल्लियों के प्रतिभागी शामिल होंगे, एक प्रार्थना से शुरू होगी जिसकी अगुवाई कार्डिनल रेइना करेंगे। इसके उपरांत 3 साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और तदुपरांत संत पापा लियो का संबोधन होगा। कार्डिनल ने रोम के पल्लियों की मुख्य चुनौतियों के बारे में वैटिकन समाचार से कहा, हमारे सामने टूटते परिवारों की बड़ी चुनौती है, जहां हम परिवारों में आपसी संबंधों में बिखराव, बच्चों की परवरिश में चुनौतियों के अलावे संस्था के रूप में परिवार के हर पहलू को कमजोर पाते हैं। इससे जुड़ी एक अन्य समस्या नशा पान है, जो युवाओं को अपना शिकार बना रही है। उन्होंने कहा, घर की कमी और उससे जुड़ी गरीबी तेजी से गंभीर होती जा रही है। बाजार की ताकतों की वजह से घर की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि यह औसत वेतनधारियों की पहुंच से बाहर हो गया है। कार्डिनल ने कहा, हम मसीह को अपने जीवन के केंद्र बिंदु में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि संत पापा ने हमें विगत साल अपने संबोधन में आह्वान किया था। अतः हम 2033 में होने वाले मुक्ति की जयंती की ओर अपनी निगाहें गड़ाते हैं। उधर परम धर्म पीठ के स्थायी प्रवर्तक स्वरूप न्यूयॉर्क में महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफ जेड एल कामिस ने अपने प्रथम वक्तव्य में नफरत फैलाने वाली बातों को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक वार्ता में विष घोलती है, लोगों के बीच विभाजन को बढ़ावा देती और बहुधा हिंसा और उत्पीड़न के लिए एक माहौल तैयार करती है। 17 सितंबर को महाधर्माध्यक्ष एल कामिस ने न्यूयॉर्क में अंतर धार्मिक और अंतर सांस्कृतिक संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देने पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में अपना पहला वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, शांति स्थापित करने के लिए सिर्फ शब्द काफी नहीं है। सच्ची सहनशीलता का मतलब उदासीनता या सापेक्षवाद नहीं है, इसका मतलब है हर व्यक्ति की गरिमा और उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता को सही रूप में स्वीकार करना। सच्ची सहनशीलता हेतु बातचीत और आपसी समझ स्थापित करने हेतु हमें रूढ़िवादी सोच को त्यागते हुए धैर्य में बने रहने की आवश्यकता है। संत पापलियो के संदेशों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, हमें वार्ता को हर तरह से पूर्वग्रह, नाराजगी, कट्टरता और यहाँ तक कि नफरत से मुक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा, आइए हम शब्दों को हिंसा मुक्त करें। उधर बच्चों के लिए मद उपलब्ध कराने वाली यूएन के यूनिसेफ ने यमन में युद्ध की स्थिति को लेकर इस बात की चिंता जताई है कि युद्ध की उग्रता के कारण वहां के बच्चों को बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। एजेंसी के रिपोर्टों के अनुसार 2 सप्ताहों के अंतराल में 1,04,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, जिसमें बच्चों की संख्या 57,000 है। यूनिसेफ ने युद्ध में शामिल सभी दलों से अपील की है कि वे आम लोगों, खासकर बच्चों की रक्षा करें, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करें और जरूरतमंदों के लिए सुरक्षित और बिना रुकावट मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद करें। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और फादर संजय दिलीप एक्का। श्रोताओं, 12 और 13 सितंबर को भारत की मेजबानी में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इस वर्ष के 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई देशों के शीर्ष नेताओं के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख भी शामिल हुए और इसका आयोजन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण की थीम के तहत किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है और वैश्विक संस्थाओं को भी बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप ढलना होगा। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब कई अन्य देश भी शामिल हैं। इसकी स्थापना प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उस वैश्विक व्यवस्था में अधिक मजबूत आवाज देने के उद्देश्य से हुई थी जिस पर लंबे समय से पश्चिमी देशों का प्रभाव रहा है। ब्रिक्स नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र भी अपनाया जिसमें बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने, वैश्विक संस्थाओं में सुधार और विकासशील देशों की भूमिका व प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में AI, जलवायु सहन सह क्षमता और विकास सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का भी समर्थन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र मंगलवार 8 सितंबर को न्यूयॉर्क के UN मुख्यालय में शुरू हुआ। महासभा के निवर्तमान अध्यक्ष एनालेना बेरबाक ने समापन भाषण दिया। इसके बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने बेरबाक से अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। यह अध्यक्षता एक वर्ष के कार्यकाल के लिए होती है। नए महासभा अध्यक्ष खलीलुर रहमान ने युद्धों, मानवीय संकटों और गहराते जलवायु संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रति वैश्विक भरोसा फिर से कायम करने का यह दृढ़ संकल्प जताया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है। यह वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है तथा प्रस्तावों को अपनाता है। हालांकि महासभा के अधिकांश प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क स्थित UN मुख्यालय में शुरू हुआ। नए महासभा अध्यक्ष बांग्लादेश के खलीलुर रहमान ने अपने कार्यकाल की प्राथमिकताएं पेश करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रति वैश्विक भरोसा फिर से बहाल करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल चुकी है और संयुक्त राष्ट्र को भी भविष्य के लिए तैयार होना होगा। इस वर्ष महासभा की थीम है भरोसा बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन, ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सर्वजन के लिए काम करे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि नया सत्र ऐसे समय शुरू हो रहा है जब दुनिया युद्धों, भू राजनैतिक तनाव, असमानता और गहराते जलवायु संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय व्यवस्था में भरोसा फिर से कायम करना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है।
2: यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय परिसर में जापानी शांति घंटी बजाने के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए दुनिया भर में बढ़ती हिंसा, विभाजन और हिंसक टकरावों के बीच विश्व नेताओं से शांति में निवेश बढ़ाने की अपील की। यूएन जापान संघ ने 8 जून 1954 को जापानी शांति घंटी संयुक्त राष्ट्र को भेंट की थी। यह घंटी 60 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा दान किए गए सिक्कों और विभिन्न प्रकार के धातुओं से तैयार की गई थी। इसे पारंपरिक शिंटो मंदिर जैसी लकड़ी की संरचना में लटका कर रखा गया है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर में बढ़ती हिंसा, विभाजन और हिंसक टकरावों के बीच विश्व नेताओं से शांति में निवेश बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में जापानी शांति की घंटी बजाने के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शांति अपने आप हासिल नहीं होती, इसके लिए लगातार मेहनत और ठोस कार्रवाई जरूरी है। महासचिव ने कहा कि हिंसा और विभाजन समुदायों को तोड़ रहे हैं, हिंसक टकराव फैला रहे हैं और लोग पीड़ा झेल रहे हैं, मगर समाधान के लिए जरूरी संवाद और एकजुटता कमजोर पड़ रही है। ये अपील 21 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस से पहले आई है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है शांति में निवेश, सर्वजन के लिए, हर जगह हर दिन। यूएन प्रमुख ने विश्व नेताओं से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, मानवाधिकार, संवाद और कूटनीति में निवेश बढ़ाने की अपील की।
2: 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए जघन्य आतंकवादी हमलों में हजारों लोगों की जान चली गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कहा कि 25 वर्ष पहले हुए ये हमले किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। हमलों की 25वीं बरसी पर उन्होंने हमलों के पीड़ितों, जीवित बचे लोगों और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे राहत कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अनेक देशों ने सुरक्षा उपायों को मजबूत किया और आतंकवाद से निपटने के प्रयास तेज किए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों की 25वीं बरसी पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लगभग 3,000 पीड़ितों को याद किया जो अमेरिका और 90 से अधिक देशों से थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उन सभी लोगों के साथ खड़ा है जिनका जीवन इन हमलों से प्रभावित हुआ। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक ने महासचिव का संदेश दोहराते हुए कहा,
4: As we pay tribute to the victims,
3: पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए आइए आतंकवाद से मुक्त भविष्य के निर्माण के लिए हम अपने साझा संकल्प को फिर से दोहराएं। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक के शब्द। महासचिव ने कहा कि 2026 में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति के 20 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। ये याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक साझा जिम्मेदारी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने देशों से आतंकवाद रोधी कदमों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानून के अनुरूप रखने की अपील की है।
2: अफगान में 2021 में तालिबान की सत्ता में लौटने के बाद से हालात लगातार बिगड़े हैं। लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं और बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है। तालिबान शासन का सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने कहा, आज अफगानिस्तान में बहुत से लोगों के हालात बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, आवाजाही की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर लगे कड़े प्रतिबंधों की निंदा की। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

0: आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापालियो चौदहवें ने शुक्रवार को अगुस्टिनियन धर्म समाज द्वारा संचालित संत पापालियो चौदहवें अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें प्रेम की सभ्यता का निर्माता होने का संदेश दिया। संत पापा ने विद्यार्थियों को अपने संबोधन में कहा, मैंने शुरू से ही विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी निकायों, सामाजिक संगठनों, कलीसिया से जुड़े समुदायों और नेटवर्क के साथ व्यापक वार्ता के लिए अध्ययन केंद्र की प्रतिबद्धता की सराहना की है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोगपूर्ण संबंध और आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा,
1: Segreto è nel camminare insieme, sempre.
0: कि यह राज इस बात में निहित है कि हम हमेशा साथ मिलकर चलें और उन लोगों से अपने विचारों को साझा करने हेतु अपने द्वार बंद कभी ना करें जो हमसे अलग हैं। संत पापा ने अध्ययन केंद्र के सदस्यों को सच्चे मानवतावाद के मूल्यों से प्रेरणा लेने को प्रोत्साहित किया। ये मूल्य सृष्टिकर्ता के प्रति हमारे खुलेपन में, दुष्टों के संग भ्रातृत्व में संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा, हम युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि शांति और न्यायपूर्ण संतुलन के ताने बाने से सभ्यता का निर्माण करते हैं। हमारे समय की चुनौतियों का सामना हम ख्रिस्तीय नहीं करते तो वर्तमान सामाजिक, श्रम, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में ख्रिस्तीयता के प्रकटीकरण की नई व्याख्या की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने जोर दिया कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें चाहिए कि हम आम विद्यार्थियों और धर्म सिद्धांत और विशेषज्ञों के अलावे लोगों तथा संस्थान से निरंतर वार्ता करें। संस्थान के लक्ष्य को आशा की एक प्रेरिताई निरूपित करते हुए उन्होंने कहा, हमें सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन हेतु एक ऐसी तैयारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो आम भलाई, समुदाय के प्रति जिम्मेदारी, एकजुटता, न्याय और शांति पर आधारित रिश्ते को स्थापित करने हेतु सेवा के कार्य में समर्पित हो। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगुस्टिनियन संस्थान मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, जिसके फलस्वरूप प्रेम व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में नवीनता लाने का एक मूल सिद्धांत बन सकता है। उन्होंने संस्थान के विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा, ईश्वर की नई चीजों में दक्षता हासिल करें, उनमें तेजी और निपुणता हासिल करते हुए सबको चकित करें, लेकिन उन सभी चीजों में भी जिसे वे गुप्त रूप में हमारे लिए लाते हैं। रोम के विकर जनरल ने वैटिकन समाचार से वार्ता करते हुए अनंत शहर के कलिस्से के संबंध में कहा कि रोम में भूखों मरना कठिन है, लेकिन लोग निश्चित ही अकेलेपन से मरते हैं। 19 सितंबर 2025 की आधिकारिक प्रेरितिक बैठक की भांति संत पापालियो चौदहवें के 18 सितंबर 2026 को संत जॉन लातेरान के महागिरजाघर में रोम धर्म प्रांत की आम बैठक के पूर्व वैटिकन समाचार से वार्ता करते हुए रोम के विकर कार्डिनल बाल्दो रेइना ने कहा, हम धर्माध्यक्ष और उनके धर्म प्रांतों के बीच संबंध को मजबूत कर रहे हैं। इस प्रेरितिक बैठक की शुरुआत, जिसमें धर्म प्रांत के 334 पल्लियों के प्रतिभागी शामिल होंगे, एक प्रार्थना से शुरू होगी जिसकी अगुवाई कार्डिनल रेइना करेंगे। इसके उपरांत 3 साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और तदुपरांत संत पापा लियो का संबोधन होगा। कार्डिनल ने रोम के पल्लियों की मुख्य चुनौतियों के बारे में वैटिकन समाचार से कहा, हमारे सामने टूटते परिवारों की बड़ी चुनौती है, जहां हम परिवारों में आपसी संबंधों में बिखराव, बच्चों की परवरिश में चुनौतियों के अलावे संस्था के रूप में परिवार के हर पहलू को कमजोर पाते हैं। इससे जुड़ी एक अन्य समस्या नशा पान है, जो युवाओं को अपना शिकार बना रही है। उन्होंने कहा, घर की कमी और उससे जुड़ी गरीबी तेजी से गंभीर होती जा रही है। बाजार की ताकतों की वजह से घर की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि यह औसत वेतनधारियों की पहुंच से बाहर हो गया है। कार्डिनल ने कहा, हम मसीह को अपने जीवन के केंद्र बिंदु में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि संत पापा ने हमें विगत साल अपने संबोधन में आह्वान किया था। अतः हम 2033 में होने वाले मुक्ति की जयंती की ओर अपनी निगाहें गड़ाते हैं। उधर परम धर्म पीठ के स्थायी प्रवर्तक स्वरूप न्यूयॉर्क में महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफ जेड एल कामिस ने अपने प्रथम वक्तव्य में नफरत फैलाने वाली बातों को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक वार्ता में विष घोलती है, लोगों के बीच विभाजन को बढ़ावा देती और बहुधा हिंसा और उत्पीड़न के लिए एक माहौल तैयार करती है। 17 सितंबर को महाधर्माध्यक्ष एल कामिस ने न्यूयॉर्क में अंतर धार्मिक और अंतर सांस्कृतिक संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देने पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में अपना पहला वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, शांति स्थापित करने के लिए सिर्फ शब्द काफी नहीं है। सच्ची सहनशीलता का मतलब उदासीनता या सापेक्षवाद नहीं है, इसका मतलब है हर व्यक्ति की गरिमा और उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता को सही रूप में स्वीकार करना। सच्ची सहनशीलता हेतु बातचीत और आपसी समझ स्थापित करने हेतु हमें रूढ़िवादी सोच को त्यागते हुए धैर्य में बने रहने की आवश्यकता है। संत पापलियो के संदेशों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, हमें वार्ता को हर तरह से पूर्वग्रह, नाराजगी, कट्टरता और यहाँ तक कि नफरत से मुक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा, आइए हम शब्दों को हिंसा मुक्त करें। उधर बच्चों के लिए मद उपलब्ध कराने वाली यूएन के यूनिसेफ ने यमन में युद्ध की स्थिति को लेकर इस बात की चिंता जताई है कि युद्ध की उग्रता के कारण वहां के बच्चों को बहुत कष्ट

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: श्रीराम और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया,

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं।
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज क्षमा हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: हमारे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव के जीवन में आध्यात्मिक तटस्थता एक वह पायदान है, एक वह स्थिति जहां कोई भी व्यक्ति अपने को किसी भी बातों और चीजों से विचलित होता नहीं पाता है। चाहे परिस्थितियां सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह अपने में सारी चीजों को एक ही मनोभाव से शांति में ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ना तो मौत का भय होता और ना ही जीवन के प्रति कोई मोह। उसके जीवन में चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना आए, वह अपने में स्थिर और अडिग बना रहता है। श्रोताओं, लेकिन जीवन के उस मुकाम तक पहुंचना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। वर्ष के 25वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम आध्यात्मिक तटस्थता की एक विषय वस्तु को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में कितना विकास किया है। हम मौत और जीवन की परिस्थितियों को किस रूप में लेते हैं। वे कौन सी बातें हैं जो हमें स्वतः ही जीवन में विचलित कर देती हैं। आध्यात्मिक विचलन की स्थिति में हम अपने में किस तरह का व्यवहार और वर्ताव करते हैं।
1: यीशु ने अपने चेलों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ एक दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह एक घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो। उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों को सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए तो एक घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो एक घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, उन्हें एक एक दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने उन्हें हमारे बराबर बना दिया जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ एक दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे।
0: श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में ईश्वरीय सानिध्य को देखने और उनमें बने रहने को मदद करे, जिससे हम अपने दैनिक जीवन की बातों और घटनाओं को एकात्मकता के भाव से बिना विचलित और प्रभावित हुए स्वीकार कर सकें। श्रोताओ, नबी इसायस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के निकट रहने का आह्वान करता है। यह हमें उनकी दुहाई देने को कहता है। हमारा ऐसा करना हमें पापों और बुराइयों से बचे रहने में मदद करता है। ईश्वर के निकट रहने और उनकी दुहाई देने के फलस्वरूप ईश्वर हम पर अपनी करुणा और दयामयी निगाहें फेरते हैं, क्योंकि वे दया के सागर हैं। उनकी दया की बदौलत हम अपने को उनके विचारों के अनुरूप संचालित होता पाते हैं, और उनके विचार यद्यपि हमारे विचार नहीं होते, हम उन्हें स्वीकारने के योग्य होते हैं। हम ईश्वर के विचारों की थाह नहीं ले सकते हैं और ना ही उन्हें अपने जीवन में समझ सकते हैं, लेकिन उनके सानिध्य में हमारा रहना उसी भांति जीवन और हमें हरा भरा बनाए रखता है जैसे कि नदी के तट पर लगाए गए वृक्षों। हम जीवन के दुख तकलीफों रूपी तेज धूप में अपने को प्रभावित नहीं होता पाते हैं, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम और करुणा की शीतल जलधारा हमें पोषित करते रहती है। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ हमें इसे और भी अधिक गहराई से समझने में मदद करता है, जहां हम जीवन और मृत्यु के बारे में संत पौलुस के मनोभावों को सुनते हैं। वे दोनों ही परिस्थितियों में अपने को आनंदित पाते हैं, क्योंकि वे मसीह के सुसमाचार अनुरूप आचरण करते हैं। ईश्वर के निकट रहना उन्हें किसी भी चीज, जीवन या मरण के लिए सदैव तैयार रखता है, जो उनकी आध्यात्मिक तटस्थता है। श्रोताओं, वही आज के सुसमाचार में हमारे लिए इस बात की झलक मिलती है कि किस भांति ईश्वर से दूर रहना हमें उनकी बातों और विचारों को समझने में असक्षम बनाता है। ईश्वर अपने में उदार और न्यायी हैं। उनके प्रेम की सीमा हमारे विचारों से नहीं आंकी जा सकती है। उन्हें हम अपने विचारों के अनुरूप संचालित करने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईश्वर की निगाहों में हम सभी बराबर हैं, अतः वे किसी के संग पक्षपात या अन्याय नहीं करते हैं। वही मानव के रूप में हम अपने मेहनतपूर्ण कार्यों हेतु अधिक पाने की चाह रखते हैं, जबकि स्वामी हमसे कम और अधिक का तर्क वितर्क नहीं करते हैं। कम और अधिक की भावना हमारे मानवीय सोचने विचारने के मनोभावों से उत्पन्न होती है, जहां हम अपने को दूसरों से बेहतर और अधिक महत्वपूर्ण होने की सोचते हैं। श्रोताओं, आज का सुसमाचार हमें ईश्वर की उदारता पर ईर्ष्या और द्वेष नहीं करने का आह्वान करता है। यह हमें अपने जीवन में अपने कार्यों को निष्ठा में पूरा करने और फल प्राप्ति को ईश्वर के हाथों में छोड़ने का संदेश देता है, जो हमारे कार्य करने के तौर तरीकों को जानते हैं। हम स्वामी से मांग नहीं कर सकते हैं कि हमने इन सारी चीजों को किया है, अतः हमें उसी अनुपात में दिया जाए। हम ईश्वर की उदारता पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके मनोभावों को अपनी सोच के अनुरूप बदलने का दबाव ही डाल सकते हैं। यह हमारे हृदय को विस्तृत करने की चुनौती देता है, जहां हम दूसरों को मिले गुणों और क्षमताओं से रूठते नहीं, बल्कि आनंदित होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें भी उसी रूप में अपने वरदानों से विभूषित किया है। ऐसा केवल तब होता है जब हम अपने को ईश्वर के निकट लाते और अपने को सदैव उनके सानिध्य में पाते हैं। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा उनके बेटे से निवेदन करें कि वे हमें अपनी कृपा से भर दें, जिससे हम फलों की चाह रखे बिना अपने दैनिक जीवन के उत्तरदायित्वों को उनकी महिमा और स्तुति हेतु पूरा कर सकें, जिसके लिए पिता ने हमें जीवन का वरदान दिया है।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें आगामी 25 से 28 सितंबर तक फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा करेंगे, जो पोप बनने के बाद उनकी पांचवीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा होगी। शुक्रवार 18 सितंबर को वैटिकन प्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने पोप की यात्रा के बारे बताया, जो उन्हें पेरिस, लूर्द एवं उत्तर पूर्वी शहर मेट्स ले जाएगी। फ्रांस नवा देश होगा जहां पोप लियो यात्रा करेंगे और इसमें देश के अधिकारियों और राज्य के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात, युवाओं और स्थानीय कलीसिया के पुरोहितों से मुलाकात, चैरिटी केंद्रों का दौरा और यूनेस्को मुख्यालय का दौरा आदि कार्यक्रम शामिल होंगे। उनके सभी भाषण, प्रवचन और घोषणाएं फ्रेंच में होंगी, सिवाय यूनेस्को में उनके भाषण के, जो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में होगा। मिट्स में टू द रूट ऑफ यूरोप फॉर पीस एंड यूनिटी मीटिंग में भी उनका भाषण पूरी तरह अंग्रेजी में होगा। मत्तेओ ब्रूनी ने बतलाया कि पोप फ्रांसीसी समाज, इसके लोगों, इसकी संस्कृति, इसके इतिहास के साथ साथ इसके विश्वास एवं एक ऐसी कलीसिया से भी मिलेंगे जो देश के सबसे कमजोर बेटे बेटियों, सबसे गरीब लोगों के लिए बहुत अधिक समर्पित हैं। उन्होंने एक ऐसे देश के बारे में भी बात की जो समाज, मानवता और जीवन तथा विज्ञान, तकनीकी तरक्की एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुद से सवाल पूछ रहा है, और एक ऐसे देश के बारे में भी चर्चा की जो दुनिया के लिए खुला है, और कहा कि वहां संघर्ष की स्थितियों का जिक्र हो सकता है। ब्रूनी ने फ्रांसीसी समाज में कलीसिया की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने फ्रांसीसी कलीसिया के इतिहास एवं समृद्धि पर ध्यान दिया, जिसने हाल के सालों में बपतिस्मा लेने वालों की संख्या में वृद्धि देखी है, जहां 2026 के पास्का के अवसर पर कुल 13,000 वयस्कों ने बपतिस्मा लिया। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक ने फिर बताया कि यूनेस्को एक ऐसी जगह है जहां मानवता खुद पर, अपने इतिहास पर, अपने भविष्य पर सोचती है और शांति के माध्यम से कला और शिक्षा के मूल्य पर ध्यान दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, क्योंकि यह संस्कृति से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वैटिकन एवं यूनेस्को 2027 में राजनयिक संबंध के 75 साल पूरा होने के जश्न मनाएंगे। अंत में मत्तेओ ब्रूनी ने यूरोप, उसके भविष्य और उसके अतीत को यात्रा के अंतिम हिस्से सीमावर्ती शहर मेट्स में एक जरूरी थीम के तौर पर बताया, जिसमें एकता, विविधता, शांति और दूसरी संस्कृतियों के लिए खुलापन आदि विषय शामिल होंगे। पोप के साथ अन्य प्रतिनिधियों में संस्कृति एवं शिक्षा विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जोस टोलेंटिनो डिमेंडो का, प्रेरितिक सिग्नातुरा के प्रीफेक्ट कार्डिनल डोमिनिक मेम्बर्ती, अंतर्धार्मिक वार्ता विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल जोर्ज गुआकार्ड और धर्मदक्षों के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट महाधर्मदक्ष फिलिपो इयानोन शामिल होंगे। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वे उस समय न्यूयॉर्क में होंगे। पोप लियो चौदहवें फ्रांस की इस यात्रा में अपने पूर्वाधिकारियों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं।
1: संत पापा लियो चौदहवें ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में टूरिन 2025 वर्ल्ड विंटर गेम्स में भाग लेने वाले करीब 150 इटालियन स्पेशल ओलंपिक एथलीटों का स्वागत किया। स्पेशल ओलंपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है। संत पापा ने कहा, मुझे आपसे मिलकर और इस समय आपके द्वारा अनुभव की गई खेल प्रतियोगिताओं की खुशी को आपके साथ साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे भी खेल बहुत पसंद है और मैं इसके महान रचनात्मक मूल्य का कायल हूँ, क्योंकि यह व्यक्ति को महान और प्रामाणिक मूल्यों में शिक्षित करता है। इसके अलावा यह प्रतिस्पर्धी और शौकिया दोनों गतिविधियों में स्वयं एथलीटों के जीवन में इन मूल्यों का गवाह बनने का अवसर प्रदान करता है। खेलों में शामिल होने का मतलब है पूरी गंभीरता और कड़ी मेहनत से जुटना और फिर उस लगन के नतीजों को ईमानदारी, भरोसे और खुलेपन, टीम भावना और हिम्मत के साथ साझा करना। आप यह सब करते हैं और इसकी खूबसूरती को एक बहुत ही खास तरीके से दिखाते हैं। संत पापा लियो ने स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के एक समूह से मिलते हुए संत पापा फ्रांसिस की बात को याद करते हुए कहा कि खेल उन सार्वजनिक भाषाओं में से एक है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और शारीरिक अंतरों से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करती है, उन्हें एक ही खेल में भागीदार बनाती है और जीत व हार दोनों में साझेदार बनाती है। मैं आपके यहाँ आने, आपके साथ आने वाली सच्ची खुशी और आपके जरिए मिलने वाले सकारात्मक संदेश के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना संदेश समाप्त करते हुए संत पापा ने उन्हें माता मरियम और संत पियर जॉर्जो प्रसाती की मध्यस्थता में सौंपा और कहा कि संत जॉर्जो आप ही की तरह एक युवा खिलाड़ी थे जो यीशु से प्रेम करते थे और जानते थे कि खेल के मूल्यों को एक अच्छे और उदार जीवन यानी एक पवित्र जीवन में कैसे बदला जाए, और यह सब उन्होंने अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर किया। और संत पापा लियो 14वें ने रोम के धर्म प्रांतीय सभा से कहा कि वे अपने नए प्रेरितिक कार्य वर्ष की शुरुआत केवल नई पहलें जोड़ने के बजाय अपनी गतिविधियों को सुनने, समझने और उनका मूल्यांकन करने में समय लगाकर करें। शुक्रवार को संजोन लातेरन महागिरजा घर में धर्म प्रांतीय सभा को संबोधित करते हुए संत पापा ने कहा कि वे कोई नया प्रेरितिक कार्यक्रम पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रेरितिक कार्य मूल्यांकन का एक साझा तरीका का प्रस्ताव दे रहे हैं। संत पापा ने धर्म प्रांत के प्रेरितिक जीवन की जांच के लिए तीन मुख्य क्षेत्रों की पहचान की, मसीह से मिलना और दूसरों को उनसे मिलने में मदद करना, समुदाय का निर्माण करना और शहर में रहना और उसकी सेवा करना। रोम सिर्फ कलीसिया की गतिविधियों की पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि उसके मिशन की जगह है। कलीसिया को शहर के उम्मीदों, कमजोरियों और सवालों को समझने और यह पहचानने के लिए बुलाया गया है कि सुसमाचार कहाँ जवाब दे सकता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओं, मानव के जीवन में आध्यात्मिक तटस्थता एक वह पायदान है, एक वह स्थिति जहां कोई भी व्यक्ति अपने को किसी भी बातों और चीजों से विचलित होता नहीं पाता है। चाहे परिस्थितियां सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह अपने में सारी चीजों को एक ही मनोभाव से शांति में ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ना तो मौत का भय होता और ना ही जीवन के प्रति कोई मोह। उसके जीवन में चाहे कोई भी स्थिति क्यों न आए,

0: वह अपने में स्थिर और अडिग बना रहता है श्रोताओं, लेकिन जीवन के उस मुकाम तक पहुंचना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। वर्ष के 25वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम आध्यात्मिक तटस्थता की एक विषय वस्तु को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में कितना विकास किया है। हम मौत और जीवन की परिस्थितियों को किस रूप में लेते हैं? वे कौन सी बातें हैं जो हमें स्वतः ही जीवन में विचलित कर देती हैं? आध्यात्मिक विचलन की स्थिति में हम अपने में किस तरह का व्यवहार और वर्ताव करते हैं?
1: यीशु ने अपने चेलों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ एक दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह एक घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों को सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए तो एक घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो एक घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, उन्हें एक एक दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने उन्हें हमारे बराबर बना दिया जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ एक दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में ईश्वरीय सानिध्य को देखने और उनमें बने रहने को मदद करे, जिससे हम अपने दैनिक जीवन की बातों और घटनाओं को एकात्मकता के भाव से बिना विचलित और प्रभावित हुए स्वीकार कर सकें। श्रोताओं, नबी सायस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के निकट रहने का आह्वान करता है। यह हमें उनकी दुहाई देने को कहता है। हमारा ऐसा करना हमें पापों और बुराइयों से बचे रहने में मदद करता है। ईश्वर के निकट रहने और उनकी दुहाई देने के फलस्वरूप ईश्वर हम पर अपनी करुणा और दयामयी निगाहें फेरते हैं, क्योंकि वे दया के सागर हैं। उनकी दया की बदौलत हम अपने को उनके विचारों के अनुरूप संचालित होता पाते हैं, और उनके विचार यद्यपि हमारे विचार नहीं होते, हम उन्हें स्वीकारने के योग्य होते हैं। हम ईश्वर के विचारों की थाह नहीं ले सकते हैं और ना ही उन्हें अपने जीवन में समझ सकते हैं, लेकिन उनके सानिध्य में हमारा रहना उसी भांति जीवन और हमें हरा भरा बनाए रखता है जैसे कि नदी के तट पर लगाए गए वृक्षों। हम जीवन के दुख तकलीफों रूपी तेज धूप में अपने को प्रभावित नहीं होता पाते हैं, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम और करुणा की शीतल जलधारा हमें पोषित करते रहती है। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ हमें इसे और भी अधिक गहराई से समझने में मदद करता है, जहां हम जीवन और मृत्यु के बारे में संत पौलुस के मनोभावों को सुनते हैं। वे दोनों ही परिस्थितियों में अपने को आनंदित पाते हैं क्योंकि वे मसीह के सुसमाचार अनुरूप आचरण करते हैं। ईश्वर के निकट रहना उन्हें किसी भी चीज जीवन या मरण के लिए सदैव तैयार रखता है, जो उनकी आध्यात्मिक तटस्थता है। श्रोताओं, वही आज के सुसमाचार में हमारे लिए इस बात की झलक मिलती है कि किस भांति ईश्वर से दूर रहना हमें उनकी बातों और विचारों को समझने में असक्षम बनाता है। ईश्वर अपने में उदार और न्यायी है। उनके प्रेम की सीमा हमारे विचारों से नहीं आंकी जा सकती है। उन्हें हम अपने विचारों के अनुरूप संचालित करने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईश्वर की निगाहों में हम सभी बराबर हैं, अतः वे किसी के संग पक्षपात या अन्याय नहीं करते हैं। वही मानव के रूप में हम अपने मेहनतपूर्ण कार्यों हेतु अधिक पाने की चाह रखते हैं, जबकि स्वामी हमसे कम और अधिक का तर्क वितर्क नहीं करते हैं। कम और अधिक की भावना हमारे मानवीय सोचने विचारने के मनोभावों से उत्पन्न होती है, जहां हम अपने को दूसरों से बेहतर और अधिक महत्वपूर्ण होने की सोचते हैं। श्रोताओं, आज का सुसमाचार हमें ईश्वर की उदारता पर ईर्ष्या और द्वेष नहीं करने का आह्वान करता है। यह हमें अपने जीवन में अपने कार्यों को निष्ठा में पूरा करने और फल प्राप्ति को ईश्वर के हाथों में छोड़ने का संदेश देता है, जो हमारे कार्य करने के तौर तरीकों को जानते हैं। हम स्वामी से मांग नहीं कर सकते हैं कि हमने इन सारी चीजों को किया है, अतः हमें उसी अनुपात में दिया जाए। हम ईश्वर की उदारता पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके मनोभावों को अपनी सोच के अनुरूप बदलने का दबाव ही डाल सकते हैं। यह हमारे हृदय को विस्तृत करने की चुनौती देता है, जहां हम दूसरों को मिले गुणों और क्षमताओं से रूठते नहीं बल्कि आनंदित होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें भी उसी रूप में अपने वरदानों से विभूषित किया है। ऐसा केवल तब होता है जब हम अपने को ईश्वर के निकट लाते और अपने को सदैव उनके सानिध्य में पाते हैं। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा उनके बेटे से निवेदन करें कि वे हमें अपनी कृपा से भर दें, जिससे हम फलों की चाह रखे बिना अपने दैनिक जीवन के उत्तरदायित्वों को उनकी महिमा और स्तुति हेतु पूरा कर सकें, जिसके लिए पिता ने हमें जीवन का वरदान दिया है।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें आगामी 25 से 28 सितंबर तक फ्रांस की प्रेरित यात्रा करेंगे, जो पोप बनने के बाद उनकी पांचवीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेरित यात्रा होगी। शुक्रवार 18 सितंबर को वैटिकन प्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने पोप की यात्रा के बारे बताया, जो उन्हें पेरिस, लूर्द एवं उत्तर पूर्वी शहर मेट्स ले जाएगी। फ्रांस नवा देश होगा जहां पोप लियो यात्रा करेंगे और इसमें देश के अधिकारियों और राज्य के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात, युवाओं और स्थानीय कलीसिया के पुरोहितों से मुलाकात, चैरिटी केंद्रों का दौरा और यूनेस्को मुख्यालय का दौरा आदि कार्यक्रम शामिल होंगे। उनके सभी भाषण, प्रवचन और घोषणाएं फ्रेंच में होंगी, सिवाय यूनेस्को में उनके भाषण के, जो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में होगा। मिट्स में टू द रूट ऑफ यूरोप फॉर पीस एंड यूनिटी मीटिंग में भी उनका भाषण पूरी तरह अंग्रेजी में होगा। मत्तेओ ब्रूनी ने बतलाया कि पोप फ्रांसीसी समाज, इसके लोगों, इसकी संस्कृति, इसके इतिहास के साथ साथ इसके विश्वास एवं एक ऐसी कलीसिया से भी मिलेंगे जो देश के सबसे कमजोर बेटे बेटियों, सबसे गरीब लोगों के लिए बहुत अधिक समर्पित है। उन्होंने एक ऐसे देश के बारे में भी बात की जो समाज, मानवता और जीवन तथा विज्ञान, तकनीकी तरक्की एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुद से सवाल पूछ रहा है, और एक ऐसे देश के बारे में भी चर्चा की जो दुनिया के लिए खुला है, और कहा कि वहां संघर्ष की स्थितियों का जिक्र हो सकता है। ब्रूनी ने फ्रांसीसी समाज में कलीसिया की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने फ्रांसीसी कलीसिया के इतिहास एवं समृद्धि पर ध्यान दिया, जिसने हाल के सालों में बपतिस्मा लेने वालों की संख्या में वृद्धि देखी है, जहां 2026 के पास्का के अवसर पर कुल 13,000 वयस्कों ने बपतिस्मा लिया। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक ने फिर बताया कि यूनेस्को एक ऐसी जगह है जहां मानवता खुद पर, अपने इतिहास पर, अपने भविष्य पर सोचती है और शांति के माध्यम से कला और शिक्षा के मूल्य पर ध्यान दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, क्योंकि यह संस्कृति से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वैटिकन एवं यूनेस्को 2027 में राजनयिक संबंध के 75 साल पूरा होने के जश्न मनाएंगे। अंत में मत्तेओ ब्रूनी ने यूरोप, उसके भविष्य और उसके अतीत को यात्रा के अंतिम हिस्से सीमावर्ती शहर मेट्स में एक जरूरी थीम के तौर पर बताया, जिसमें एकता, विविधता, शांति और दूसरी संस्कृतियों के लिए खुलापन आदि विषय शामिल होंगे। पोप के साथ अन्य प्रतिनिधियों में संस्कृति एवं शिक्षा विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जोस टोलेंटिनो डिमेंडो का, प्रेरितिक सिग्नातुरा के प्रीफेक्ट कार्डिनल डोमिनिक मेंबर्ती, अंतर्धार्मिक वार्ता विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल जोर्ज गुआकाज और धर्माध्यक्षों के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष फिलिपो इयानोन शामिल होंगे। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वे उस समय न्यूयॉर्क में होंगे। पोप लियो चौदहवें फ्रांस की इस यात्रा में अपने पूर्वाधिकारियों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं।
1: संत पापा लियो चौदहवें ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में टूरिन 2025 वर्ल्ड विंटर गेम्स में भाग लेने वाले करीब 150 इटालियन स्पेशल ओलंपिक एथलीटों का स्वागत किया। स्पेशल ओलंपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है। संत पापा ने कहा, मुझे आपसे मिलकर और इस समय आपके द्वारा अनुभव की गई खेल प्रतियोगिताओं की खुशी को आपके साथ साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे भी खेल बहुत पसंद है और मैं इसके महान रचनात्मक मूल्य का कायल हूँ, क्योंकि यह व्यक्ति को महान और प्रामाणिक मूल्यों में शिक्षित करता है। इसके अलावा यह प्रतिस्पर्धी और शौकिया दोनों गतिविधियों में स्वयं एथलीटों के जीवन में इन मूल्यों का गवाह बनने का अवसर प्रदान करता है। खेलों में शामिल होने का मतलब है पूरी गंभीरता और कड़ी मेहनत से जुटना और फिर उस लगन के नतीजों को ईमानदारी, भरोसे और खुलेपन, टीम भावना और हिम्मत के साथ साझा करना, आप यह सब करते हैं और इसकी खूबसूरती को एक बहुत ही खास तरीके से दिखाते हैं। संत पापा लियो ने स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के एक समूह से मिलते हुए संत पापा फ्रांसिस की बात को याद करते हुए कहा कि खेल उन सार्वजनिक भाषाओं में से एक है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और शारीरिक अंतरों से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करती है, उन्हें एक ही खेल में भागीदार बनाती है और जीत व हार दोनों में साझेदार बनाती है। मैं आपके यहाँ आने, आपके साथ आने वाली सच्ची खुशी और आपके जरिए मिलने वाले सकारात्मक संदेश के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना संदेश समाप्त करते हुए संत पापा ने उन्हें माता मरियम और संत पियर जॉर्जो प्रसाती की मध्यस्थता में सौंपा और कहा कि संत जॉर्जो आप ही की तरह एक युवा खिलाड़ी थे जो यीशु से प्रेम करते थे और जानते थे कि खेल के मूल्यों को एक अच्छे और उदार जीवन यानी एक पवित्र जीवन में कैसे बदला जाए, और यह सब उन्होंने अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर किया। और संत पापा लियो 14वें ने रोम के धर्म प्रांतीय सभा से कहा कि वे अपने नए प्रेरितिक कार्य वर्ष की शुरुआत केवल नई पहलें जोड़ने के बजाय अपनी गतिविधियों को सुनने, समझने और उनका मूल्यांकन करने में समय लगाकर करें। शुक्रवार को संजोन लातेरन महागिरजाघर में धर्म प्रांतीय सभा को संबोधित करते हुए संत पापा ने कहा कि वे कोई नया प्रेरितिक कार्यक्रम पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रेरितिक कार्य मूल्यांकन का एक साझा तरीका का प्रस्ताव दे रहे हैं। संत पापा ने धर्म प्रांत के प्रेरितिक जीवन की जांच के लिए तीन मुख्य क्षेत्रों की पहचान की: मसीह से मिलना और दूसरों को उनसे मिलने में मदद करना, समुदाय का निर्माण करना और शहर में रहना और उसकी सेवा करना। रोम सिर्फ कलीसिया की गतिविधियों की पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि उसके मिशन की जगह है। कलीसिया को शहर के उम्मीदों, कमजोरियों और सवालों को समझने और यह पहचानने के लिए बुलाया गया है कि सुसमाचार कहाँ जवाब दे सकता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।